0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: Clear. Do I need to be used? Can you check that for traffic control?